0: एउटा ट्रकले केवल सामान मात्र बोक्दैन, यसले विश्वास पनि बोक्छ। यसले जीवन, व्यवसाय र राष्ट्रलाई अघि बढाउँछ। त्यसैले भित्र जाने हरेक कुरा जेन्युइन हुनुपर्छ। स्थानीय समाधान सजिलो लाग्न सक्छ, तर जब तपाईँको व्यवसाय अप टाइममा चल्छ, सानो सम्झौता पनि ठूलो समस्यामा बदलिन सक्छ। टाटा अधिकृत सेवा टच पोइन्ट रोज्नुहोस्, जहाँ छ बलियो र व्यापक नेटवर्क, टाटा जेन्युइन पार्ट्स र प्रशिक्षित विशेषज्ञहरू र सेवा योजनाहरू जसले जोखिम घटाउँछ र खर्च नियन्त्रणमा राख्छ। किनकि जब सबै कुरा तपाईँको ट्रकमा निर्भर हुन्छ, जेन्युइन हेरचाहले मात्र साँचो निश्चिन्तता दिन्छ। यही फरक हामी प्रदान गर्छौं, फरक नै जेन्युइन हो।
1: எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் அவ்வளவு கேட்டாரு, பக்குல நாலு சொருகி சொருகி அக்குள்ள அமைக்கணும் போயிட்டாரு.
2: அவன் யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ஒரு தடவை அவன் ஜெயில போட்டாங்க, ஜெயில் கம்பியெல்லாம் வச்சு தூக்கி போட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டாரு.
3: அப்படியா?
4: வேற ஏதோ பிளான் பண்றானோ.
5: ஏரியால எதுவும் பெருசா நடக்க போது மட்டும் தெரியுது.
6: திங்களூர் அங்கிய போதும், திங்களூர் அங்கிய போதும், கண்கள் ஊர் அங்கிடுமா? அன்பே, ஆறு உயிரே, மத்தவங்க தான் என்ன பார்த்து பயப்படணும்.
7: இல்ல, நீ பாடலன்னா நான் பயப்பட மாட்டேன்.
8: மேல இருந்து கல்லு வந்து ஏரியால ஒருத்தம் விடாம எல்லாத்தையும் சண்டை வலிச்சா கல்லு ஓடதான் செய்யும்.

0: आवाज बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz
1: रेडियो NRN 99.1 समय को ख्याल राखौं 6 बज्यो।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड।